0: कॉमनवेल्थ गेम्स के हाइलाइट्स का, तो उसे सुनते हैं।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स
2: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे हैं। ग्लासगो में भले ही ठंड हो, लेकिन हमारे एथलीट्स जोश, जुनून और जज्बे के साथ भारत का नाम रोशन करने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। अभी तक के प्रमुख स्टार्स भारत की तरफ से रहे हैं मीराबाई चानू और शर्मिला धनकर। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। वहीं शर्मिला धनकर ने महिलाओं के F57 शॉटपुट में भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स का पहला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता।
3: स्पर्धाओं के छठे दिन क्या फिर भारत के लिए कोई जादू की छड़ी चमकने वाली थी, और कौन होने वाले थे वो एथलीट जो चमत्कारी प्रदर्शन करके दिखाएं? भारोत्तोलन में अब तक जो भी भारतीय लिफ्टिंग हॉल में आया था उसने पदक का भार तो उठा ही लिया था, छठे दिन ये सिलसिला टूट गया। भारतीय मुक्केबाजों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और अब पदक बस उनकी जद में आने ही वाले हैं। क्वार्टर फाइनल चक्र था, एक जीत यानी पदक पक्का। सिलसिले का आरंभ पहली बाउट से ही प्रीति ने कर दिखाया। एथलेटिक्स में चार भारतीय थे, 400 मीटर पुरुष में दो, ऊंची कूद में पूजा और 10,000 मीटर में गुलवीर। स्विमिंग में दो बड़े सितारे पूल में उतरे, साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। लेकिन यहाँ पर मुकाबला इतना कड़ा है कि हीट्स को पार करने के बाद फाइनल में जगह बना लेना भी एक उपलब्धि बन जाता है, तो पैरा खिलाड़ी भी अपने संकल्पों को उड़ान देने में लगे हुए हैं। सारी चर्चा करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में, राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 के छठे दिन का लेखा जोखा। एथलेटिक्स में कल भी एक शानदार प्रदर्शन आया।

0: इस बार ट्रैक से लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने इस साल चल रहे अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखा और रजत पदक हासिल किया। 10,000 मीटर की स्पर्धा में गुलवीर ने इस साल अपना सबसे अच्छा जो समय निकाला था वो था 27:24.28। इसके हिसाब से मुकाबला खासा कड़ा दिख रहा था क्योंकि फाइनल में कीनिया के ही 3 धुरंधर 27 मिनट से कम समय निकाल चुके थे। तेज बारिश के बीच ये रेस आरंभ हुई। गुलवीर धुन के पक्के निकले, बारिश की परवाह किए बिना अपना रिदम बनाए रखा और अंतिम लैप में तो शानदार प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया 27:49.78 के साथ। स्वर्ण पदक पाया ऑस्ट्रेलिया के वाई रॉबिन्सन ने 27:48.93 के साथ और कांस्य पदक मिला आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारके को। गुलवीर ने रवानगी से पहले ट्रेनिंग और उम्मीदों को लेकर कहा था,
1: अच्छी बेहतर करेंगे अपना जितना जैसे हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है जिस हिसाब से प्लान है कोच का अच्छा होगा।
2: बस ये लास्ट वाला।
0: पुरुषों के 400 मीटर में 2 भारतीय थे। उम्मीदें विशाल टीके से ज्यादा थीं और उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में हीट 6 में 46.49 के साथ दूसरा स्थान पाया और क्वालिफाई कर लिया। हालांकि कुल मिलाकर 16 क्वालिफायर्स में वे 14वें स्थान पर रहे। यानी अगर पदक की उम्मीद जिंदा रखनी है तो आगे उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। इसके पहले हीट 3 में राजेश रमेश 47.73 के साथ तीसरे स्थान पर आए और ओवरऑल 25वें स्थान पर रहे, क्वालिफाई नहीं कर सके। महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह से बहुत उम्मीदें थी कि वो पुरुषों की स्पर्धा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 1.93 मीटर की ऊंचाई लांघना। पूजा ने यहाँ पर शुरुआत की 1.72 मीटर से, उसके बाद 1.77 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद बहुत तेज बारिश आई और करीब 1.5 घंटे के लिए स्पर्धा को रोक दिया गया और लगता है पूजा की रिदम भी शायद यहीं पर टूट गई। जब स्पर्धा आरंभ हुई 1.82 मीटर की ऊंचाई फांदने की कोशिश पूजा ने की लगातार, लेकिन वो इसको पार नहीं कर पाई। पूजा की कूद की ऊंचाई बस यहीं थम गई और साथ ही पदक की उम्मीद भी जाती रही।
3: A ray of sunshine for all the fans of weight lifting out there, and definitely a moment of pride for all Indians to smile as Harjinder Kaur won the silver medal in the women's 69 kilogram category finals, thereby taking the total medal tally to 7 in weight lifting. Harjinder won the silver medal with a total of 227 kilograms, which included 101 kilogram in snatch and 126 kilogram in clean and jerk. She put in a dominant display in the snatch category of the women's 69 kilogram final. She lifted 96 kilogram, 99 kilogram and 101 kilogram in her 3 attempts in snatch, and thereby her best effort in snatch was recorded at 101 kilogram. Thereby her total went on to become 227 kilogram, which bought India the 7th medal in weightlifting, and Harjinder contributed by bringing in the silver in the women's 69 kilogram category.
4: 1 year से सर मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए रिजल्ट है उसका ही। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, डाउन नहीं होने दिया कभी, हर टाइम मेरा साथ दिया है।
3: Well, heartbreak for all the lovers of weightlifting. India's Nirupama Devi Serum had raced her opening attempt in the clean and jerk to 123 kilogram in the women's 63 kilogram final after initially registering 115 kilogram. But she failed to complete all her 3 attempts in clean and jerk at 123 kilogram in the women's 63 kilogram final. With no successful lift recorded in the clean and jerk round, Nirupama was out of medal contention and registered a did not finish in the women's 63 kilogram final.
0: कल भारत के 5 मुक्केबाज रिंग में उतरे अपने ग्लव्स का दम आजमाने के लिए। पांचों बड़ी मेहनत कर राउंड ऑफ 8 में पहुंचे थे और अब पदक की खुशबू उन्हें बस आने ही लगी थी। एक जीत और पदक पक्का हो जाएगा, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है, मन में तो गोल्ड मेडल बसता है। कल शुरुआत की हरियाणा की उर्वर जमीन से निकली नई पौध की प्रीति पवार ने। बचपन में लड़कों के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस और पैरी करते करते 22 साल की ये लड़की विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लाई है। कल उसके मुकाबले थी रेड कॉर्नर में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड। प्रीति की चपलता, मौके चुरा कर धड़ाधड़ मुक्कों की झड़ी लगा देना, इसका निकोल के पास कोई जवाब ही नहीं था। तीनों राउंड सर्वाइव कर लेना ही निकोल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

0: have a unanimous decision. The winner in the blue corner from India, Preeti Preeti.
1: It's really nice to have a strong team because it does matter from which country you belong. So, real nice.
2: अब सेमीफाइनल में प्रीति का मुकाबला जिम्बाब्वे की कैथरीन वापे से होगा 31 जुलाई को। बस दो दिन बाद अपना 20वां जन्मदिन मनाने जा रही प्रिया घंघास भी बड़ा पीछे क्यों रहती। स्कॉटलैंड की निया मिशेल को हराकर उन्होंने खुद के लिए ही तोहफा पक्का कर लिया। हालांकि ये बाउट जीतने में उनको बहुत पसीना बहाना पड़ा। अब तय होना था तीसरे राउंड में कि किसको मिलनी है जीत, और ये पूरी तरह प्रिया का रहा। एक के बाद एक उन्होंने जब 3 स्ट्रेट पंच मिशेल के चेहरे पर जड़ दिए, तभी सबको लग गया कि अब तो ये प्रिया पंघास ही जाने वाली हैं अगले राउंड में। स्प्लिट डिसीजन आया और निर्णायकों ने ये बाउट प्रिया के नाम कर दी।
0: द विनर इन द रेड कॉर्नर प्रिया प्रिया।
2: अब पिछले हंगचाओ एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता परवीन हुडा पर जिम्मेदारी थी मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की। सामने रेड कॉर्नर में थी इंग्लैंड की शाचा हिकी। सारा स्थानीय समर्थन हिकी के साथ ही था। कांटे की लड़ाई हुई, लंबी छहरहरी परवीन ने कोशिश तो बहुत की, मुकाबले में अपने क्षण भी उन्होंने कुछ कमाए, लेकिन अंततः रेफरीज का निर्णय 2-3 से उनके विरुद्ध गया और साथ ही पदक की उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। नाम है जदुमणि सिंह। आज वो भारतीय सितारा है, उसके मुक्कों से विपक्षी थर्रा रहे हैं। कल क्वार्टर फाइनल में जाम्बिया के मांगो मौले उनके खिलाफ थे। पंचेस, अपरकट्स, जैप्स और साथ में पूरी होशियारी से गार्ड बनाए रखा जदुमणि ने, और इसका परिणाम ये हुआ एक और सर्वसम्मति से मिली हुई 5-0 की विजय। छठे दिन की अंतिम बाउट में भी एक भारतीय था, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया। रेड कॉर्नर में उनके सामने थे स्थानीय बॉक्सर रॉबर्ट मैकलाउल्टी। कपिल ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन रॉबर्ट उनसे हर क्षेत्र में बेहतर साबित हुए। 5 में से 3 मुक्केबाजों ने पदक पक्के कर लिए और कहानी तो अभी बाकी है।
3: India's para swimmers Ravi Veera Venkata Bhavani Kartik Buddigana and Ali Imam led India's campaign into the finals, recording a historic top 8 finish but narrowly missing out on podium placements at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. In men's 100-meter freestyle S13 final, in a thrilling race, Buddigana came agonizingly close to a medal, finishing joint 4th with a time of 57.57 seconds, less than a second away from the bronze medal winner. Ali Imam completed the double final appearance for India, finishing 7th with a time of 1 minute 03.73 seconds. We may not have had a podium finish at the ongoing Commonwealth Games 2026 for our para swimmers, but this achievement in itself calls for nothing less than a celebration. What looked like a promising start from our swimmer Sri Hari Nataraj today did not quite make it to a promising finish. In the semi-finals, Nataraj finished 7th. In the semi-final, he too, and 11th overall. He clocked 25.29 seconds, an improvement from his heat timing of 25.52 seconds. But it was not enough to make the 8-man final. Veteran swimmer Sajan Prakash was eliminated in the preliminary rounds. Placed 8th in his group and 28th overall in the men's 50-meter butterfly with a time of 24.94 seconds, he failed to advance to the next round. On the 6th day of the Glasgow 2026 Commonwealth Games, the Indian men's pair team of Dinesh Kumar and Navneet Singh defeated the Cook Islands in their men's pair sectional play match in bowls. This critical group stage win kept India's knockout qualification hopes alive as part of the round-robin sectional format. In women's singles sectional play in bowls, Nayanmoni Saikia made an impressive start in a women's singles lawn bowls campaign at the Glasgow 2026 Commonwealth Games, securing a crucial opening sectional play victory against Wales' Amy Williams.
2: एथलेटिक्स के हिसाब से आज का दिन भारत के लिए बहुत ही गर्मा गर्म होने वाला है। तेजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्ट पट में उतरेंगे और उनके साथ होंगे समरदीप सिंह गिल, जिनको कहीं से आप हल्का नहीं आंक सकते। 200 मीटर की हीट्स में अनिमेश कुजूर उतरेंगे, 400 मीटर की बाधा दौड़ में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी होंगे। मुरली श्रीशंकर पर सबकी निगाहें रहेंगी, हमारे देश के सबसे उमदा लॉन्ग जम्प।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।

0: लिखते हैं।
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर 1 कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
1: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु

0: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
1: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
1: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
1: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
1: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
1: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
1: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
1: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है

0: मेरे मन में एक बात आ रही है।
1: वो क्या?
0: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
1: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
0: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ,
1: और

0: ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
1: जॉन
0: हाँ,
1: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
0: अच्छा,
1: ये देखो।
0: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
1: छोटे छोटे छेद?
0: हाँ,
1: उनसे क्या होगा?
0: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
1: अच्छा।
0: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
1: वाह।
0: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
1: चलो करके देखते हैं।
0: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
1: हाँ।
0: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
1: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
0: हाँ, ठीक है। अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
1: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
0: और घुमाओ। हाँ, शाबाश। ऐसे ही लगता है हमें कामयाबी भी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
1: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।

0: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति हैं जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर
1: जी। साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
2: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
1: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
2: हाँ, आइए। यहाँ?
1: हाँ, आइए, इस तरफ।
2: इधर?
1: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
2: इधर?
1: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
0: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अन अनबिलीवेबल मिरेकल।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது NCERT தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழுமம் வழங்கிய விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சி
4: மற்றும் 30°
3: இன்னும் சில நொடிகளில் 4 மணிக்கான செய்திச் சுருக்கம்.